मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104.5 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 26 तारीख व दिन है शुक्रवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री संगे बोम्पा सेठीपा, नियंत्रण कक्ष पर उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गेरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास, मोम्पा में उद्घोषक श्री लुपसांग नरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना

0: प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर

0: प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business,
3: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है।

0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेशे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। इसमें आइए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति।

0: محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: गांधी स्मृति। देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी। तब सर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास। लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन।
2: कवि ने कहा है और मैंने तो कहीं यहां पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्म देखना है तो जन्म के बाहर जो हुआ है वो तो बगीचा के लिए कहा।

लेकिन मैं याद रखा कि क्या खूबसूरत चीज है, उसको मैं जन्नत नहीं मानता। जन्नत ऐसी आता हूँ मैं देखी से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसी ऐसी शरीफ मुसलमान बन जाए, शरीफ हिंदू बन, शरीफ सिख, सिख बनो, सब और सबके सब भाई भाई बन जाए, तब तो मैं कहूंगा कि वही शेर जो है वो शेर सब व्यवस्थी पर लगाए जाए तो मुझे भाई ना भी लगेगा। लेकिन वहां यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए, दिल साफ हो जाए, दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा, वो तो नहीं है, उसमें से तो पाकिस्तान उनको दूसरे साल हो जाता है। लेकिन अगर वो बदलता है और शक्ल बदली कि वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ

ব্যাহুরা সেটা মূলটাই খোলা ব্যবস্থা সকালে তো কে সত্যি হে জন্নত বাহার নেই বলা হে জন্নত হ্যাঁ হে আরে লোক আই জন্নত নিয়ে রেলা হে জন্ম দেশ না তুমি নারাশ্রম প্রবেশ করো ঋষি পিছিয়ে তো উসে আমি মুকাবলা করেন আর হম উসে বাড়িয়ে কি কোশিশ করেন আর কহেঙ্গে কি হ্যাঁ ভাই পাকিস্তান মে তো হে এসে হাম হে পাকিস্তান হমারে ভাই হে হম উনকে ভাই হে বো হমারে ভাই হে হম সব দোনো হিন্দুস্তান কে টুকরে তো হে রে চাই পশু রাহা তো ক্যা নয় রাহা তো ক্যা হমারা দিন এক হো গয়া তো ভূগোল মে টুকরে রহে তো উসি ক্যা বনা দোনো হকুমত অলগ অলগ কহিন যায় তো ভি ক্যা হুয়া সারি হিন্দু দুনিয়া কে হকুমত এক তো নহীঁ হোগি অলগ অলগ রহে লেকিন দিন এক মিল গয়া হমারা তো পিছে হকুমত পচাস রহে পাঁচ সো রহে উসে মুসকো ক্যা আপকো ক্যা পড়ে मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान की देहात हो तो उस 60,000 देहात की वो हुकूमत बनी है समय उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है उसको बड़ा अच्छा है उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा अच्छा होगा सहज होगा और तब कुछ वो देहातों का काम तो बहने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से ऐसी वो खूबसूरत चीज है तो मुझको तो खेती की देगी घोष में पी लेता और कोई तो कहे कि तो पीछा बेवकूफ आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का की वो आशा रहता है लेकिन मैं क्या करूं बना हूं इसे और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है पढ़ता नहीं था ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ आपको कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ मैं अखबारों को भी पढ़ता जाता नहीं था पढ़ता नहीं था अंग्रेजी उसको कहाँ इतना आता था अंग्रेजी बड़ी मुसीबत थोड़ा पड़ता था और ऐसा गुजराती भद्दा जान देता था वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सके उसको दिखाने का कैसे पड़ेगा ऐसा अनजान आदमी तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में राजकोट में नहीं काठियावाड़ में नहीं सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सब एक मन कर रहे और एक मन कर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं ये मेरा ख्वाब तो अगर लोग उसको सुनाते हैं सब जगह से तार लेते हैं तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ तो इसलिए मैं मान लेता हूँ शायद वो ख्वाब स्वराज तो आया और तो नहीं कम आए उसको मैं स्वराज मानता नहीं हूँ लेकिन इसी जंग में जो उस वक्त एक जवानी है और जवानी भी शुरू होती थी उसमें ये ख्वाब मैंने देखा और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना मरने के किनारे पर बैठा लेकिन मैं दिल नाचेगा और एक छोटा ये यहाँ लड़के लड़के है ना इस तरह से ये बुरा नाचेगा अच्छा हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया हिंदू मुसलमान कोई आपस लेते फिरते नहीं है और इस तरह से रहते हैं हाँ आप लोग सब मदद करें और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने मेरी आप क्या सुनना था लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है तो बात तो सच्ची वो कहता है बुरा मूर्ख है उससे क्या हुआ तो उसकी बात है ऐसा करो मुसलमान मान ले हिंदू मान ले सिख मान ले पारसी मान ले ईसाई मान ले और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे कभी हम अलग अलग थे हम सबका धर्म है अपने अपने धर्म में कायम रहे अच्छे बने तो सब धर्म एक साथ चलते हैं एक किसी कोई दिखेगा ही नहीं तो मुसलमान ही तो पारसी है शरीफ आदमी है ऐसा कहा जाएगा इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा और आप नाचेंगे नचा नहीं करता वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा बना देगा और इसी दुनिया यहाँ बन रही है कि जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है कहीं भी एक डर रहता है वो कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं तो कहीं तो हमको किसी से नहीं डरते एक ईश्वर पड़ा है वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है हृदय आकाश में पड़ा है और ईश आकाश में पड़ा है उस ईश्वर से हम डरते हैं उसे किसी से नहीं डरते हैं अरे देखो ये पहाड़ जैसा पठान है इसी के उसे नहीं डरते हैं मैं तो डर जाता हूँ तो कहीं

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम वंदना में गांधी स्मृति सुना। आइए अब सुनते हैं अनु तिलोटा की आवाज में चंद देव भक्ति गीत।

श्रोताओं, अनुजनोटा के इस गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत। कार्यक्रम प्रदेशी संगीत में आज आप सुनिए जिग्मी दोरजी और साध्या द्वारा चंद लदा की लोकगीत।

0: श्रोताओं, इस लद्दाखी लोकगीत के साथ ही विभिन्न पेन का कार्यक्रम प्रदेश संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आज आप सुनिए पीएम श्री जेनवी तवांग के मानविकी की छात्र सुक्षी पेमा छुकी से एक वार्ता। वार्ता का विषय है मेरा शोक और इसने मुझे क्या सिखाया है।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं पेमा छुकी पीएम श्री जेनवी तवांग में कक्षा 11वीं मानविकी में पढ़ती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय मेरा शोक और इसने मुझे क्या सिखाया है। जो किताब दिल को छू जाए वो दोस्त बन जाती है। पढ़ने वाले की शख्सियत में चार चांद लगाती है। ना कोई शिकायत ना कोई मांग, किताबें ही तो है जो उम्र भर साथ निभाती है। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई शोक अवश्य होता है। शोक हमारे जीवन को आनंद, ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। शोक न केवल हमें मानसिक सुख देते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी महत्व

0: भूमिका निभाते हैं। मेरा शौक पुस्तक पढ़ना है। मुझे खाली समय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक रहा है। धीरे धीरे यह शौक आदत में बदल गया। मैं कहानी की किताबों के साथ साथ उपन्यास, जीवनी, प्रेरणादायक पुस्तकें और सामान्य ज्ञान से जुड़ी किताबें भी पढ़ती हूँ। पुस्तकें मुझे एक नई दुनिया से परिचित कराते हैं और मेरे ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। पुस्तक पढ़ने से मेरी भाषा में बहुत सुधार हुआ है। मेरे शब्द कोश में नए शब्द जुड़े हैं और मेरे लेखन क्षमता भी बेहतर हुई है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती हूँ। किताबें पढ़कर मेरी कल्पना शक्ति भी विकसित हुई है। मेरे एक शौक ने मुझे कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाया है। इसने मुझे अनुशासन सिखाया है, क्योंकि नियमित रूप से पढ़ने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक होता है। इसने मुझे धैर्य रखना सिखाया है, क्योंकि हर पुस्तक को समझने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। पुस्तकें पढ़ने से मुझे अच्छे और बुरे में अंतर समझ में आया है। महापुरुषों की जीवनी पढ़कर मुझे ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष का महत्व समझ में आया। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा मुझे किताबों से ही मिली है। मेरा शौक मुझे बुरी आदतों से दूर रखता है और खाली समय का सही उपयोग करना सिखाता है। जब मैं उदास या तनाव में होती हूँ, तब पुस्तकें मेरा मन शांत कर देती है। वे मेरी सच्ची मित्र है, जो हर समय मेरा साथ देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि शौक जीवन को सुंदर और आशापूर्ण बनाते हैं। हर एक किताब एक नई दुनिया दिखाती है। खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जैन मेहताओं के मानविकी के छात्र सुखशी पेमा छिकी से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था मेरा शौक और इसने मुझे क्या सिखाया है।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रहे तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 होने वाले हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं, जावेद अली की आवाज में फिल्म पुष्पादा राइस से। इस गीत को लिखा है राकीब आलम ने तथा संगीत दिया है देवी श्रीप्रसाद ने।

ओम शांति ओम से आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है विशाल लदलानी ने तथा संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म गदर 2 से अरिजीत सिंह और मिथुन के आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है साहित्य गदरी ने तथा संगीत से संवारा है मिथुन ने।

श्रोता, अभी आपने फिल्म गदर दूर से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, अन्विता दत्त के गीत पर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शेखर रवजानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन के आवाजों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अग्रगी लीजिए सुनिए फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से अतीब असलम के आवास में। इस गीत को बोल दिया है इशारत कामिल ने तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

प्रीतम के संगीत पर श्रोता अभी आपने फिल्म बुलबुलाए टू से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के आवाज में गीत सुना। आइए कार्यक्रम को यहीं जारी रखते हुए सुनते हैं यसीर देसाई और अल्तमिश फरीदी की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जबरिया जोड़ी से। इस गीत को बोल दिया है रेशमी विराग ने तथा संगीतकार है तनिष्क बगजी।

अमित त्रिवेदी के संगीत पर श्रोताओं आपने फिल्म केदारनाथ से एक गीत सुना। इस गीत के गायक थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है रश्मि विराग ने तथा संगीत से सवारा है जैम एट ने।

तनिष्क बख्शी के संगीत पर श्रोताओं में आपने फिल्म केसरिया से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में एक गीत सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म एयरलिप से अमर मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है कुमार ने तथा संगीत दिया है अमर मलिक ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए शेख चिन्ना मौलाना से शहनाई वादन। राग है पूरी कल्याणी और कापी।

श्रोताओं, अभी आपने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत शेख चिन्ना मौलाना से शहनाई वादन सुना। राग था पूर्वी कल्याणी और कापी। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सचिन कुमार ने राजधानी ईटानगर के राकाप स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट परिसर का दौरा कर निर्माण कार्य में एवं बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के कल्पान्योर जिले के अजाली से 12 किलोमीटर दूर DNL स्टोन क्रशर प्लांट में काम करने वाले 4 मजदूर भूस्खलन से घायल हुए। कल्पान्योर जिले में 24 जून को आई फ्लैश फ्लड में लगातार 4 लोगों की तलाश के लिए निपको के लोअर पान्योर जल विद्युत परियोजना के बांध क्षेत्र से आज लगातार तीसरे दिन भी SDRF टीम की खोज एवं बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ताई तागत ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में इस राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल का पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर भी सभी की निगाह है। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और मतदाताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने बताया है कि नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। पर मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी

0: चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीत।
1: गृहमंत्री ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इस पोर्टल पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
0: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने राजधानी ईटानगर के पूना के निकट राकाप स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट परिसर का दौरा कर निर्माण कार्य एवं बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा आधारभूत संरचना की स्थिति का आकलन भी किया। उन्होंने संस्थान के जल संशोधन संयंत्र का भी निरीक्षण किया है। इसके अलावा सचिव ने ईटानगर मंडल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलापूर्ति विभाग तथा यूपीआर विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अरुणाचल प्रदेश के कल्पानूर जिले के वेलकम गेट के पास याजाली से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित डीएलएन स्टोन क्रशर प्लांट के कार्यरत चार मजदूर अपने शिविर में सो रहे थे, तभी भारी भूस्खलन की चपेट में आकर घायल हो गए। घटना का सही समय अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। राहत एवं बचाव दल को गुरुवार शाम इस घटना की सूचना मिली। घटनास्थल पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तथा स्टोन क्रशर प्लांट तक जाने वाली सभी सड़क मार्ग अवरुद्ध है। बताया गया है कि कुछ मजदूर मलबे में आंशिक रूप से दबे हुए थे, जिन्हें राहत दल के पहुंचने से पहले ही उनके सहकर्मियों ने बाहर निकाल लिया। पापुमपारे जिले की चिकित्सा टीम तथा एनडीआरएफ की चिकित्सा एवं बचाव टीम कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर अतुल के नेतृत्व में एम्बुलेंस के साथ आज सुबह लगभग 10 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम को होद से, जो 24 जून की फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्र में से एक है, लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्टोन क्रशर प्लांट तक पहुंचना होगा। माना जा रहा है कि सभी घायल मजदूर असम के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायलों को कई जगहों पर फ्रैक्चर तथा सिर में गंभीर चोटें आई हैं। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई गई है। राहत दल ने घायलों को सुरक्षित निकालने के लिए निकासी योजना भी तैयारी कर ली है। कल्पानूर जिले में 24 जून को आए फ्लैश फ्लड में लापता चार लोगों की तलाश के लिए निपको के लोअर पानूर जल विद्युत परियोजना के बांध क्षेत्र में आज लगातार तीसरे दिन भी सुबह लगभग 10:30 बजे से एसडीआरएफ की टीम ने राफ्ट के माध्यम से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। अब तक अभियान में लगभग 23 एसडीआरएफ जवानों का लापता लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग, पूर्व सैनिक तथा पुलिसकर्मी भी बाढ़ प्रभावित निपको कॉलोनी से मलबा हटाने में सहयोग कर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन टीम के अनुसार कॉलोनी स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के अस्थायी राहत शिविर में अभी भी 62 लोग रह रहे हैं। नागरिक उड्डयन विभाग ने बताया कि गुरुवार को जीरो और पीतापुर क्षेत्र से अब तक कुल 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें निपको वीकेंड स्कूल के दिवंगत कर्मचारी का पार्थिव शरीर, उनके पति, पिता तथा दो नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। बाद में पार्थिव शरीर को असम के बालीचरण गोहपुर भेज दिया गया। फ्लैश फ्लड में गंभीर रूप से घायल एक महिला तथा कैंसर से पीड़ित एक मरीज को भी बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से नाहरलगुन स्थित तोमोरबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ले जाया गया। इसके अलावा वायुसेना तथा राज्य नागरिक उड्डयन विभाग के 3 हेलीकॉप्टरों की सहायता से 32 फंसे हुए घरेलू पर्यटकों को भी नाहरलगुन पहुंचाया गया है। अरुणाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद तैतागाग ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तैतागाग ने अपने जीवन की शुरुआत बाल श्रमिक के रूप में की थी, बाद में वे शिक्षक बने। वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भारत में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति से शिष्टाचार भेंट भी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं के बीच हुई वैधता, अधिक यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय से कम होने या 12 महीने होने अनिवार्य है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो

0: फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
1: अमेरिका ने आज दूसरे बैक्सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत में 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर की। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा है कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों में एआई युग के लिए विकास समर्थन और नवाचार समर्थन नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। यह मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी अभियान की जीत के साथ समापन किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्री लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। जापान के प्रधानमंत्री सोनी ताइकाची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 100वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani, the news led by Shabashachi Bhattacharji. Home Minister Amit Shah today called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interest and the future of the country's youth. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. He made these remarks while addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi. Mr. Shah said that authorities seized around 2.6 million kilograms of synthetic drugs between 2004 and 2014. In comparison, the quantity of synthetic drugs seized increased to 11.8 million kilograms between 2014 and 2026. He said these figures show that the government's campaign against drug trafficking is making steady progress. In Venezuela, the death toll from two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through the rubble in a race against time to save lives after the earthquake struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from beneath the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude earthquake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude quake. Both occurred at shallow depths, making the destruction more severe. The Uttar Pradesh police have arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was registered following the recommendations of the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust surfaced. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही 104 FM मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आए श्रोताओं, पहले आपको आज की शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम जदुन नेरिम के अंतर्गत सुन पाएंगे नेहरू गोनपा गौशे समूह के श्रीमती यांगचिन लामो और उनके साथियों द्वारा जदुन क्यूंचक सुम्पा तुंगशा ड्रोयमा ग्यावे शप्तन बर्चे लमसल कैप्टो और गोवा मल्लम। आज शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आज आप सुन पाएंगे एलाइड इंग्लिश स्कूल तवांग के छात्र रिक्सन डोलमा से हिंदी में एक कविता। आज शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम तर्पण। इसमें श्रोताओं आज आप सुन पाएंगे अलका इकनी के आवाज में फिल्म सलामी से एक गीत, हमराज फिल्म से एक गीत, राज फिल्म से एक गीत, दिल क्या करे फिल्म से एक गीत, खलनायक फिल्म से एक गीत और फिल्म कुदरत का कानून से एक गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने। इसमें आज आप सुन पाएंगे टाइगर श्रॉफ की आवाज में एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे आनंद ले पाएंगे। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 27 जून 2000

26 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना, दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, इसके अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे वंकप वंशो के आवास में चनाधुनिक वांचो गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसमें कला आप सुन पाएंगे पीएम श्री जैन वितांग के विज्ञान के छात्र तेंजिन पेमा से एक वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत, इसमें कल आप आनंद लीजिएगा सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोसा और सुजैन डी मेलो, पुष्पा तर्राइस फिल्म से जावेद अली, गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन, और फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से मोहम्मद फैज की आवाजों में चंद नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसमें कल आप आनंद ले पाएंगे शेरशाह फिल्म से जुबेर नौटियाल और आशीष कौर, कबीर सिंह फिल्म से सचिन तंदोन और परंपरा ठाकुर, बजरंगी भाईजान फिल्म से सुबेर नौटियाल, गुड बॉय फिल्म से अमित त्रिवेदी, सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान, क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह, पेरी फिल्म से मोहित चौहान, दोपति फिल्म से परंपरा तंदोन, श्रीकांत फिल्म से जुबेर नौटियाल और तुलसी कुमार, और फिल्म हसीन दिलरुबा से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे मोनपा कार्यक्रम नमथल लेरिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर मोनपा कार्यक्रम मोनपा लोकगीत, शाम 6 बजे कार्यक्रम लेरिमसेडा, 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर कार्यक्रम जनुलेरी में सुनेगा यूथ वेलफेयर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन सोसाइटी मुक्तों के लमा संगीत क्षेत्र और साथियों द्वारा शेदन ट्रोचो। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा, इसमें कल आप सुन पाएंगे स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार विषय पर डॉक्टर दिव्य पांडे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के साथ हुए एक भेंटवार्ता। कल शाम 7:32 पर कार्यक्रम साज और आवाज, इसमें कला पहले सुन पाएंगे फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से एक साज और उसी साज को कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में सुन पाए।

देंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूर का अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

Oh, my,

Jana.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और

0: representatives from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the US Army's Central Command being stationed in Doha, Qatar. Meanwhile, the United States and the Gulf Cooperation Council today reaffirmed their strategic partnership at a ministerial meeting in Bahrain's Manama. In men's cricket, hosts Ireland were 109 for 4 in 13.4 overs against India in the first T20 international of the two-match series in Belfast when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. The second and final T20 international of the series will be played on Sunday. In the FIFA Football World Cup Group I fixtures, Norway will take on France late tonight. In the other Group I match, Iraq will face Senegal. Both matches are scheduled to kick off at 12:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कविता पे आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आज आप सुनिए एलआर इंग्लिश स्कूल तवांग के छात्र रिक्सिन डोलमा से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक है खिलौने वाला।
2: नमस्ते, मेरा नाम रिक्सिन डोलमा है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है लैटिन स्कूल। मैं आज आपको एक कविता सुनाने चाहती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है खिलौने वाला और उसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। खिलौने वाला, वाह देखो मैं आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर सर सर चलने वाली, सीटी भी है। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहु पली सी, पहनी कानों में वाली, छोटा साची सेट है। छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे तुमिश पान है छोटी छोटी तलवार। नई खिलौने ले लो भैया, जो जो वारा अपकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सल्ला कहती है माँ से लेने को सारी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या सारी ले आता है, सारी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम मेमन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ या मैं कभी न लूँगा, या तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तड़का को मारूँगा राम समा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, रोड कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। धन्यवाद
1: श्रोता, अभी आपने कविता पे आधारित कार्यक्रम आज के कविता के अंतर्गत एनआर इंग्लिश स्कूल तवांग के छात्र रिजन डोलमा से हिंदी में कविता सुना। कविता का शीर्षक था खिलौने वाला। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:13 हो गए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप सुन पाएंगे अलका याग्निक के गाए हुए चंद फिल्मी नगमे। तो आइए श्रोता कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं सलामी फिल्म से अलका याग्निक के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है समीर ने तथा संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म हमला से अकेडमी के आवास में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता सुधाकर शर्मा तथा संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, अकेडमी के ही आवास में फिल्म राज से। इस गीत को बोल दिया है समय ने तथा संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आप हमें आना ले रहे हैं आकाशवाणी के तवांग केंद्र से मिरीमेल 197.2 मीटर तथा 104 FM मेगाहर्ट्ज़ पर साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में।

दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, अलका याग्निक की आवाज में ही फिल्म दिल क्या करे से। गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोता, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम दर्पण का अंतिम गीत फिल्म कुदरत का कानून से अलका याग्निक के ही आवाज में। इस गीत को बोल दिए हैं समीर ने तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सप्ताह कार्यक्रम दर्पण अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 होने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के टनौर केंद्र से प्रसारित प्रदेशी समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि नशीले पदार्थों का खतरा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों तथा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से एक मंच पर आकर इस लड़ाई को जीतने की अपील की। श्री शाह आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 से 2026 तक बीच लगभग 26,000 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए हैं, जबकि वर्ष 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलोग्राम हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार प्रगति कर रहा है। याजाली से लगभग 12 किलोमीटर दूर कई पान्योर जिले के प्रवेश द्वार के निकट स्थित DNL स्टोन क्रशर प्लांट में कार्यरत चार श्रमिक अपने शिविर में सो रहे थे, तभी भारी भूस्खलन की चपेट में आने से घायल हो गए। घटना किस समय हुई इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और सभी ओर से सड़क संपर्क बाधित है। बताया गया है कि कुछ श्रमिक मलबे में आंशिक रूप से दब गए थे, जिन्हें राहत एवं बचाव दल के पहुंचने से पहले उनके सहकर्मियों ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। पापुमपारी जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई दो चिकित्सा टीमें तथा NDRF की मेडिकल एवं रेस्क्यू टीम्स सड़क संपर्क बाधित होने के कारण घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। बाद में स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को याजल स्थित निपको कॉलोनी लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। गंभीर रूप से घायल एक श्रमिक को आगे के उपचार के लिए जीरो भेजा गया है। सभी घायल श्रमिक असम के लखीमपुर और बोंगाईगांव जिले के निवासी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायलों को कई जगहों पर फ्रैक्चर तथा सिर में गंभीर चोटें आई हैं। गत 24 जून को याजल स्थित निपको कॉलोनी में आए भीषण भार में लापता चार लोगों की तलाश में आज लगातार तीसरे दिन भी खोज एवं बचाव अभियान जारी रहा। निपको कॉलोनी तथा जलाशय के आसपास SDRF की टीम ने सुबह 7:30 बजे से तलाश अभियान शुरू किया, लेकिन लापता लोगों का अब तक कोई पता नहीं लग सका है। SDRF के 23 जवानों ने स्थानीय लोगों, पूर्व सैनिकों तथा पुलिसकर्मियों के सहयोग से पूरे क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। टीम ने बाढ़ प्रभावित निपको कॉलोनी से मलबा हटाने का भी सहायता किया है। जिला आपदा प्रबंधन दल की रिपोर्ट के अनुसार कॉलोनी स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के अस्थायी राहत शिविर में अभी भी 62 लोग शरण ले रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किए गए क्षति आकलन के अनुसार निपको कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ से 30 मकान पूरी तरह से बह गए हैं, जबकि 52 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पोसा गांव में 10 मकान पूरी तरह से बह गए तथा 20 अन्य मकानों को नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड से प्रभावित पोतिन, होज, पितापुल और पोसा क्षेत्रों में आज भी विभिन्न स्थानों पर सड़क बहाली का कार्य जारी रहा है। पोसा पोतिन मार्ग पर आज लगभग 3 बजे यातायात के लिए साफ कर दिया गया, लेकिन 4 किलोमीटर बिंदु पर लगातार हो रहे धीमे भूस्खलन के कारण सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। पोतिन से होज के बीच का मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। हालांकि होज से सागाली के बीच सड़क यातायात के लिए बहाल कर दी गई है। इसी प्रकार पोतिन की मेन मार्ग भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ताई तागाक ने अपने जीवन की शुरुआत बाल श्रमिक के रूप में की थी, बाद में वे शिक्षक बने। वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति से शिष्टाचार भेंट भी की। फीफा विश्व कप में आज सुबह सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप डी के मैच में पैराग्वे के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया। ग्रुप डी के एक मैच में तुर्की ने लॉस एंजलिस स्टेडियम में USA को 3-2 से हराकर अपने वर्ल्ड कप अभियान का समापन किया। वहीं ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स ने कैनसस सिटी में ट्यूनिशिया को 3-1 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और मोरक्को के साथ नॉकआउट

0: fixture, the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey has signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं प्रस्तुत है देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने। इसमें आज आप सुनिए विशाल मिश्रा के संगीत पर टैगोर श्रॉफ की आवाज में एक देशभक्ति गीत।

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने के अंतर्गत टैगोर श्रॉफ की आवाज में एक देशभक्ति गीत सुना।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। तो आइए श्रोता कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म बाबू से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को बोल दिए है मशरूर सुल्तानपुरी ने तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने। गीत की फरमाइश की है पद्मटोक के स्नापा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने।

कमल अमरोही के गीत पर आइए सुनते हैं फिल्म पकीजा से गुलाम मोहम्मद की आवाज में कार्यक्रम का अगले गीत। इस गीत की फरमाइश की है वरिंग हेरा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म खिलौना से। इस गीत की फरमाइश की है मजनू का तिला दिल्ली से कमल भलूजा, मधु भलूजा, सागर भलूजा, सातना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने।

0: खुश रहे।
1: कार्यक्रम में अगली गीत की फरमाइश की है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा ने। इनकी फरमाइश का गीत है फिल्म रोमांस से। इस गीत को गाए हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोता, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में एंडी फरमेश का गीत, मदन मोहन के संगीत पर फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की फरमाइश की है नलेश्वर नगर नरवर महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर, विशाल नवकर और मलकापुर से नारायण इंगल, सोपन दैदी और आशीष मुर्खेकर ने।

श्रोताओं, अभी आप आनने रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914-908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारे रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों और कुछ और नगमों के साथ।

काशवानी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंत प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट नाइट रात्रि 9:00। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। फीफा फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जूनियर वर्ल्ड नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत 7 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ शीर्ष पर। और ABC पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 183 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में 3 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। आयरलैंड 9 विकेट पर 182 रन बनाए। लॉर्कन टकर ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली। हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और इस समय अभिषेक शर्मा 49 और तिलक वर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच 28 जून को खेला जाएगा। मुकाबले से पहले भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को साथ लेकर चलने की बात कही।
1: Just want to say, let's try and build a solid culture going forward. It's my first opportunity as a captain for the Indian team and definitely an honor and privilege and great respect as well to be leading the country. Going forward, I just want to build a culture where all of us are protecting, supporting each other through thick and thin. And more importantly, when we are out here playing the match, have fun as much as possible. It's a great opportunity and this is a family. Let's play like lions and approach the game, each and every game, like we are going to go and win it and play to the best of our ability. That's it, nothing more, but have an atmosphere.
0: बात महिला T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत हासिल की। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं हमारे सहयोगी सर फिरोजी की ये रिपोर्ट।
2: एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत निराशाजनक रही। बांग्लादेश ने महज 8 रन पर दिलारा अख्तर का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद शोभना मोस्तरी ने जुएरिया फिरदौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश के लिए जुएरिया फिरदौस ने सर्वाधिक 33 और निगार ने 32 रन का अहम योगदान दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट हासिल किए। रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारतीय टीम ने 19 गेंद शेष रहते 137 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। स्मृति मांधना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। मांधना 8 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटी। इसके बाद शेफाली वर्मा ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़कर जीत की बुनियाद रख दी। शेफाली 34 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 53 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद तेजी से विकेट गिरे और टीम ने 98 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ 5वें विकेट के लिए 30 रन जोड़कर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। रॉड्रिक्स 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने टीम को जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से रितु मोनी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। मैच के बाद भारतीय गेंदबाज श्री चरणी ने अपने विचार साझा किए।
3: आई एम जस्ट ट्राइंग टू बोल फॉर माई स्ट्रेंथ एंड जस्ट फॉलोइंग माई रूटीन एंड टेकिंग एवरी बॉक्स एवरी डे जस्ट ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट।
2: सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। आइए सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
4: प्रतियोगिता के ग्रुप ई के मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में इक्वाडोर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 बार की चैंपियन

कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर

0: जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। जर्मनी ने मुकाबले के दूसरे मिनट में लेरॉय साने के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि इक्वाडोर ने भी मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और 9वें मिनट में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के 77वें मिनट में गोंजालो प्लाटा ने बेहतरीन गोल दागते हुए इक्वाडोर को 2-1 की बढ़त दिला दी और मुकाबले को जीत लिया। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और पराग्वे के बीच खेला गया मुकाबला बिना किसी गोल के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस नतीजे के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट स्टेज में 4 जुलाई को डलास में ग्रुप जी की उपविजेता से सामना होगा। वहीं पराग्वे ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहा।
1: ऑस्ट्रेलिया आर थ्रू टू द राउंड ऑफ 32 फिनिशिंग सेकंड इन ग्रुप डी बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
0: ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में तुर्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान अमेरिका को 3-2 से हराया। अमेरिका ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। मैच के तीसरे मिनट में ऑस्टन ट्रस्टी ने सेबेस्टियन बरहाल्टर के कॉर्नर पर शानदार गोल कर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिलाई। 0-1 से पिछड़ने के बाद तुर्की ने भी जबरदस्त वापसी की। अर्दा गुलर ने बारिस यिलमाज के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए गोल दाग कर स्कोर 1-1 कर दिया। पहले हाफ में 30 मिनट के खेल के बाद तुर्की ने दूसरा गोल कर मैच में 2-1 से बढ़त बना ली। 48वें मिनट में सेबेस्टियन बरहाल्टर के गोल के साथ स्कोर 2-2 पर हो गया। मुकाबला जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी स्टॉपेज टाइम के 8वें मिनट में कान अहान ने निर्णायक गोल करते हुए तुर्की की यादगार जीत पर मोहर लगा दी।
2: Good cross, chance for the winner for Turkey, and there it is. The Turkey go home with a win in their final Group D game. First defeat for the USA at the FIFA World Cup 2026.
0: जापान और स्वीडन के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। हालांकि डलास स्टेडियम में इस नतीजे के बावजूद जापान और स्वीडन की टीमों ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। दूसरे हाफ के 56वें मिनट में रित्सु दुआन के बेहतरीन थ्रू पास पर डाइजेन माइडा ने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डालकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि स्वीडन ने जापान की लीड को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। मैच के 62वें मिनट में एंथनी एलंगा ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ही खत्म हुआ।
3: He's pulled that out of the bag for Sweden. In the end, it's over as a draw. 1-1, the final score.
0: Group F में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप F में पहले स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। नीदरलैंड्स ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच के तीसरे ही मिनट में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद मुकाबले के 7वें मिनट में ब्रायन ब्रॉबी ने टीम की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ट्यूनीशिया ने गोल करते हुए मैच में वापसी की। हैनिबल मेजबरी के कॉर्नर पर हेजम मस्तूरी ने बेहतरीन हेडर के साथ स्कोर को 2-1 कर दिया। मगर नीदरलैंड्स ने मैच का तीसरा गोल दागते हुए एक बार फिर अपनी बढ़त को बढ़ा लिया। जॉन पॉल वैन हेके ने मैच के 62वें मिनट में नीदरलैंड्स की ओर से तीसरा गोल करते हुए टीम को 3-1 से जीत दिलाई।
4: Injured player behind. It continues through Dumfries and Thaman. The Dutch are flying into the knockout stage. Top of Group F.
0: Group E के मुकाबले में कोटेडी आइवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुरासाओ को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही कोटेडी आइवर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। मैच के 7वें मिनट में निकोलस पेपे ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मुकाबले के 64वें मिनट में टीम की बढ़त को पेपे ने 2 गुना कर दिया। पेपे द्वारा किए गए दूसरे गोल से कोटेडी आइवर की जीत तय हो गई।
3: They found a way through and they found a second goal. A brace for Pepe. A wonderful finish. And now Cote d'Ivoire really can think about the round of 32. First time in their World Cup history are through to the knockout stages.
0: Vishal Sharma, Sportscan.
5: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल

0: बैडमिंटन में जगह बना ली है। एक रिपोर्ट।
1: यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व नंबर 6 और पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चौतियन चेन को सीधे गेम में 21-17, 26-24 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जिया को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग भी अंतिम आठ में पहुंच गईं। पांचवी वरीयता प्राप्त तन्वी ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को 21-12, 21-19 से हराया। रक्षिता ने तुंग की हमवतन चेन सू यू को 21-4, 21-19 से मात दी। जबकि छठी वरीयता प्राप्त देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हेंग को 21-17, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला चीनी ताइपे की लियो झाउफू से, वहीं रौनक चौहान का मुकाबला इसराइल के एम जिल्बरमैन से होगा। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा का मुकाबला डेनमार्क की क्रिस्टोफर सेन से और देविका सिहाग का सामना जापान की आर गुंजी तथा रक्षिता श्री और कनाडा की आर चान आमने सामने होंगे। प्राची वाजपेयी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एथलेटिक्स पर। स्टार स्प्रिंटर्स अनिमेश कुजूर, उन्नति बोलांडर सहित अन्य एथलीटों ने 65वीं नेशनल सीनियर इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अनिमेश और उन्नति ने ट्रैक पर जहां क्वालिफाइंग मार्क पार किया, वहीं सिंधुश्री ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सिंधुश्री के साथ बरानिका फ्लैंगोवन भी महिलाओं की पोल वॉल्ट में क्वालिफाइंग मार्क हासिल करके एशियन गेम्स के लिए जगह बनाई। उन्होंने 4.20 मीटर की दूरी तय करके 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में 20.87 सेकंड का समय निकालकर आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। बाद में 200 मीटर फाइनल में कुजूर ने 20.74 सेकंड में स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की 200 मीटर रेस में उन्नति बोलांडा ने एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की। हरिता ने महिलाओं की 200 मीटर रेस और तेजस शीर्षे ने बाधा दौड़ में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के डेकैथलॉन में केरल के तौफीक एन ने 7,276 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहिते ने रजत पदक जीता। दोनों ने कांटे की टक्कर वाले फिनिश में 7,250 अंक का एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क पार किया। महिलाओं की शॉटपुट में हरियाणा की मनप्रीत कौर और दिल्ली की सृष्टि विग ने एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पार किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैप।
0: और अब बात निशानेबाजी पर। जूनियर वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। और अब बात वॉलीबॉल पर। एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने आखिरी ग्रुप मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने अपने सभी ग्रुप मैच जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। और चलते चलते बात हॉकी पर भी। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इससे पहले ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 4 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को

0: तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप

0: है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में

0: सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement.

साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। तो श्रोताओं, के हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ ही आज का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आपकी सेवा में कल दोपहर 2 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रसारण सहायक श्री संगीबोम्पा सैधिपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता